0: दिशा तो तुम्हें पनीते तुम्हें तन्याते यवये तुम्हें पनीते स्कूला में यवये तुम्हें पनीते स्कूला में
1: देव चिरी का होजी देव कोई जिन देव डोजी दे आना को ठीक है कई काम सीखी एक्स का एफएम सीखी
2: Kaiwa NBC Radio, mia Silvia Fernando, Iga. Nakakaikitsima ngwiki ya saa, unha mwagwa programu. Ikantima.